0: ये रंग करो के गेस
1: ना करो मैं
0: चांग म्याओ म्याओ रंग के वशिंग रु मोरा के रंग ला गोयो खा तो स्किच छि
1: ना गोया के मितू